ते भागहीन जम पास, जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन धुर मस्तक लिखिया लिखास, धन धन सत संगत जित हरस पाया, मिल जन नानक नाम प्रगाश, राग गुजरी महला पंजवां, काहे रे मन चितवै उद्दम, जा आहर हर जियो परेया, सैल पत्थर मैं जंति उपाए, ताका रिजक आगै कर धरिया, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरे आ रहाओ, जनन पिता लोक सोत बनता, कोई ना किसकी धरे आ, सिर सिर रिजक संबाहे ठाकुर, काहे मन पौ करे आ, ऊड़े ऊड़ आवै सह कुसा, तिस पाशे बचरे शरे आ, तिन कवन खलावै कवन चुगावै, मन मह सिमरन करे आ, सब निधान दासी अष्ट सिधान, ठाकुर कर तल तरिया, जन नानक बल बल सद बल जाइए, तेरा अंत ना पारा वरिया, राग आसा महला चौथा, सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर गम्मा अगामे अपारा, सब त्यावै सब त्यावै तुद जी, हर सच्चे सिरजनहारा, सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा, हर त्यावू संतो जी, सब दुख विसारण हारा,

महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चिन्त न भेव। आपे अपनी बुद्ध है जेती, बरनत पिन पिन तुहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कई भूपा। अंडज जेरज सेत जकीनी, उत पुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा वै बैठा, कहूं सिमट प्यो शंकरी कैठा। सगरी सृष्ट दिखाए चंबव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अवरषा मेरी तुम करो, सिख उभार सिख संगरो। दुष्ट जते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तव शरणी परे, तिनके दुष्ट दुगत वै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते आए हैं, ताके काल निकटने आए हैं। रशा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाए निहर हो, ताके ताप तनक मोहर हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शास वै सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांस ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दे लिहो उबारी। सर्ब ठौर मोहो सहाई, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। सवैया पाए गए जब ते तुमरे, तब ते को आंख तेरे नहीं आने। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक है मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद समय, बहु भेद कहें हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहो सब तुहे बखान्यो। दोरा सकल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार। बांगहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुरु ता पाया सहज सेती, मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परियां, शब्द गावणे आईयां। शब्दो ता गावो हरी केरा, मन जनी वसाया। कह नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सा विसारना। अंगीकार ओ करे तेरा कार्ज सब सवारना। सबना गला समरा स्वामी, सो क्यों मनो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रो हर नाले। साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरा, करता तेरा सब कुछ है। जिस दे सो पावे, सदा शिव सला तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सचे साहिब क्या नहीं कर तेरा, साचा नाम मेरा आधारो। साच नाम आधार मेरा, जिन भुखां सब गवाइया। कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटों, जिस दियां ए वडियाइया। कह नानक सुनो संतो, शब्द धरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द चित कर सुभागै। कर सुभागै शब्द वाजे, कला जित कर धारिया। पंच दूत तुदवास कीते, काल कंट कुमारिया। तुर कर्म पाया तुद जिन को, से नाम हर कै लागे।
कहे नानक ता सुख हुआ, तित कर अनहद वाजे। आनंद सुनो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल वसूरे। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी, संत साजन भये सरसे पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर आपर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे। वाजे अनहद तूरे, मंदावनी महला पंजवा, थाल विच तीन वस्तु पईआ, सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पायो, जिसका सब सुधारो। जे को खावै जे को पुंचै, तिसका हुए उधारो। ए वस्त जी ना जाई, नित नित राखुर तारो। तम संसार चरण लग तरिये, सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा। तेरा कीता जातो नाही, मैनो जो कितोई, मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस पयोई। तरस पया मेरा मत होई, सतगुर सज्जन मिलिया, नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थी वै हरिया। तरस पया मेरा मत होई, सतगुर सज्जन मिलिया, नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थी वै हरिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की

सो कहियत है आत्म जिणे सगल वस ता कै जाका सतगुर पूरा ठाकुर गाइए आत्म रंग शरणी पावन नाम त्यावन सहज समावन संग ठाकुर गाइए आत्म रंग।

रहाओ, जान के चरना वसै मेरे हिरे, संग पुनीता देही जान की दूर देहो कृपा निद, नानक कै सुख एही जान के चरण वसै मेरे हिरे, संग पुनीता देही जान की

हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम्हें अपन बिरद रखाबू। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले। राखू राखनहार दयाला, नानक करके गोले वाहिगुरु जी। कबीरा राम न चेतियो, जरा पहुंचियो आए। लागी मंदर द्वार ते, अब क्या काढ़िया जाए।

बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरों श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै कर नौ निधि आवै ताए। सब थई हुए सहाय सब थई हुए सहाय। दसवां पातशाह धन धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज। सब थई हुए सहाय। दसां पातशाहियां की जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी। पंजां प्यारिया चौहां साहिबजादियां 40 मुक्तियां हठियां। जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया। देख चलाई तेग वाही देख के अणडिट कीता। तना प्यारिया सच्यारिया जी की नेक कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी साहिब बोलो जी। जिन्ना सिंघां सिंघणियां ने धर्म हित सीस दित्ते। बंद बंद कटवाए खोपरियां लुहाइयां। चरखड़ियां ते चढ़े तनारिया नाल चरवाए। गुरद्वारिया की सेवा लई कुर्बानियां कीतियां। धर्म नहीं हारिया सिक्खी केसां सवासां संग नवाही। भाणे नूं मिठा करके मन्निया तिन्हां सिरकवाना समूह शहीद सिंघां सिंघणियां जी की नेक कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी साहिब बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारिया का ध्यान धर के बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास। सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। चेतावे चेतावन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया रियायत देख तेग फतेह। बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी।

जानकी तूर देह कृपा न दो, नानक कै सुख एही। जानके चरण वसै मेरे हियर, संग पुनीता देही। जानकी तूर देह कृपा न दो, नानक कै सुख एही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, गुरु साहिब जी दे मुबारक चरणा दे विच सजे हुए साहिबां दे आलमाना दरबार दियां हाजरियां भर रही जुड़मिल बैठी गुरु प्यारी माणयोग साध संगत, गुरु साहिब जी दी मेहर सदका सजे हुए दीवाना दियां हाजरियां आप जी भर रहे सी। धन्यवाद है सत्कारयोग गुरु सवारे ढाडी जथे दा, माणयोग ग्यानी बलवीर सिंह जी बिहारीपुर वाले, तिना दा जथा हाजरियां भर रहा सी, आप जी नूं गुर इतिहास नाल जोड़ रहा सी। जथे दा धन्यवाद। गुरु चरणा दे विच दवान दी संपूर्णता दी समाप्ति दी अरदास होई। गुरु साहिब जी ने बख्शिश रूप पावन मुख वाक बख्शिश किया, बख्शा होया पावन गुरु वाक। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी विच दर्ज राग धनासरी राग विचों पंचम गुरदेव पंचम पातशाह सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज तिना की मुबारक रसना च उच्चारण किया है। हजूर बख्शिश करन बख्शा पावन रुपये साडे जीवन का जिंदगी का आधार बने, ये गुरु चरणा च अरदास है। तो ये ही सजे हुए दवान की संपूर्णता है। कड़ा प्रसाद का वर्तारा हो रहा है, जिन्हें प्राप्त नहीं किया आप जी प्राप्त कर सकते हो। उपरंत समुची संगत वास्ते गुरु का लंगर तैयार है, सब ने छक के जाना तवाओ। हुण सुखासन की सेवा नाल दी नाल सोहे दा बाणी का पाठ होगा। गुरु साहब जी के पावन स्वरूप ने जिस स्थान वाल जाणगे, उपरंत आप सारिया ने गुरु चरणों में खुशी प्राप्त करने ने। जुड़मिल बैठी समुची संगत का धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सोहला राग गौड़ी दीप की महला पहला, जैकर कीर्त्या की है करते का होई विचारो, तिरकर गावो सोहला सिमर सृजनहारो। तुम गावो मेरे निरभउ का सोहला, हम वारी जित सोहला सदा सुख होए रहाओ। नित नित जीड़े संभालियन देखे गा देवनहार, तेरे दान कीमतना पवित्र दाते कमल शुमार। संबत साह लिखिया मिलकर पाओ तेल, देह सजने सी सड़ियां जो हो वै साहिब सो मेल। कर करे हो पाहु चा सदड़े नित पवन, सदन हारा सिमरिय नानु से दे अमन राग आसा महला पहला। छे कर छे गुर छे उपदेश, गुर गुर को वेश अनेक बाबा। जै घर करते कीर्त होए सो का राख बढ़ाई तोय रहाओ। विसोए चसया कड़िया पैरा, थित्ती वारी मा हुआ। सूरज को रुत अनेक, नानक करते के केते वेश। राग धनासरी महला पहला। गगन मै थाल राव चंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती। धूप मल्यान लो पवन चबरू करे, सगल बन राई फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत भेरी रहाओ। सहस तव नैन नन नैन है तोहे को, सहस मूर्त ननायक तोही। सहस पद बिमल नानेक पद, गंध बिन सहस तव गंध विचलत मोही। सब में जोत जोत है सोए, तिस दे चानन सब में चानन होए। गुर साखी जोत प्रगट होए, जोत स्भावै सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद, लोभत मनो अनदन मोहे आही प्यासा। कृपा जल दे नानक सारिन को, होए जा ते तृणाए वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा, काम करो दन गर्भ भरिया। मिल साधु खंडल खंडा हे, पूर्व लिखत लिखे गुर पाया। मन हरले मंडल मंडा हे, कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे। कर डंडौत पुन वड्डा हे, रहाओ साकत हर रस साधना जानिया। तने अंतर हो मैं कंडा हे, ज्यों ज्यों चलहि चुभै दुख पावै। जमकाल सहस्र डंडा हे, हर जन हर हर नाम समाणे। दुख जन्म मरण पव खंडा हे, अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर। बहु शोभ खंड ब्रह मंडा हे,
ਆਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਹੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੇ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਵੇਲਾ ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ ਆਗੈ ਬਸਨ ਸੁਹਿਲਾ ਔਦ ਕਟੈ ਦਿਨ ਸਰਹਿਣਾ ਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਏ ਰਹਾਉ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬੇਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮੈਂ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸੇ ਜਗਾਏ ਪਿਆਵੈ ਹੇ ਰਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ ਜਾ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜੋ ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨਹਿ ਬਸੇਰਾ ਨਿਜ ਕਰ ਮਹਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੀ ਬਹੁਰ

से त्रिपतानी हर हर अमृत पीतर तासे सवला थी भूख पकानी जिनके वड़े भाग बड़ी उच्चै तेरा जप्यो जपानी तेरा संगत मेल प्राप्त स्वामी जन नानक दास दसानी त्रासी मल्ला चौथा हम अंधले अंध बिखे बिखराते क्यों चाले गुर चाली सतगुर दया करे सुख दाता हम लावे आपन पाली गुर सिख मीत चलो गुर चाली जो गुर कहे सोई पल मानो हर हर कथा निराली रहाओ हर के संत सुनो जन पाई गुर सेव्यो बेग बेगाली सतगुर सेव खर्च हर बांधो मत जानो आज के काली हर के सन जपो हर जपना हर सन चले हर नाली जिन हर जपया से हर होए हर मिलिया केल के लाली हर हर जपन जप लोच लुचानी हर कृपा कर बन वाली हर हर जपन जप लोच लुचानी हर कृपा कर बन वाली जन नानक संगत साध हर मेलो हम साजना पगराली त्रासी मल्ला चौथा हर हर बूंद पै हर स्वामी हम चातरक बिल बिलाती हर हर कृपा करो प्रभे अपने मुख देवो हर निम खाती हर बिन रह न सको एक राती ज्यों बिन अमले अमली मर जाई है त्यों हर बिन हम मर जाती रहाओ तुम हर सर्वर आत गा हम लै न सके अंत तुम आती तू परे परे अपरंपर स्वामी मैं जानो अपन गाती हर के संत जना हर जप्यो गुर रंग चलू ले राती हर हर पग बनिया सोबा हर जप्यो तम पाती आपे ठाकुर आपे सेवक आप बनावे पाती नानक जन तुमरी सुनाई हर राखो लाज पगाती त्रासी मल्ला चौथा काल जो का धर्म कहो तुम पाई केव छूटो हम छिड़का की हर हर जा बेड़ी हर तुलहा हर जप्यो तरे तरा की हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपावो अपना हम मांगी भगत अकागी रहाओ हर कह सेवक से हर प्यारे जिन जप्यो हर बचना की लेखा चुत्र गुप्त जो लिखिया हम सब छूटी जम की बाकी हर कह संत जप्यो मन हर हर लग संगत साध जना की दिनियर सूर त्रिहना अग्न बजाने सेव चरयो चान चंदा के तुम वड पुरख वड अगम गोचर तुम आपे आपे अपाकी जद नानक को प्रभ कृपा की जय कर दासन दास दसाखी त्रासी मल्ला चौथा कर पंजवा दो पदे एक ओंकार सत गुर प्रसाद उरतार विचार मरा रमो मरम मनमोहन नाम जपीनै अदेष्ट गोचर परमपुर स्वामी गुरपुरे पलट कर दींदै राम पारस चंदन हम कास्ट लोस्ट हर संग हरि सत संग पै हर के वजर चंदन दिखीने रहाओ नाव शेखट बोले मुखागर मेरा प्राव ना पतीनै जन नानक हर हिरदे सद त्याबो हर प्रा मेरा पीने त्रासी मल्ला चौथा गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुर गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुर ए वारा नाम ते आए हर दरगे पावे फिर जन्म ना आवे हर हर जो समाए जप मन नाम हरि हर हो सर्व सुखी हर जस ऊच सब नाते ऊपर हर हर हर सेव छड़ाई रहाओ हर कृपा निद कीनी गुर भगत अर दीनी तब हर स्यों प्रीत बनाई बहु चित विसरी हर नाम मुरतारी नानक हर पै सुखाई त्रासी मल्ला चौथा हर पढ़ हर लिख हर जप हर गाओ हर पौजल पार उतारी
मन भजन दे ध्याए हर होए संतोष्टा ए पाण हर नाम हरारी मन जपिए हर जगदीश मिल संगत साधु मीता सदानंद होवे दिन राती हर कीर कर मनवारी रहाओ हर हर करी दृष्ट तापेओ मन उद्दम हर हर नाम जपियो गत पही हमारी जन नानक की पत राख मेरे स्वामी हर आए परयो है शरण तुम्हारी 83 मल्ला चौथा 84 सिद्ध बुद्ध 33 कोड़ मुंजन चाहे हर जियो तेरो नाव गुरप्रसाद को विल्ला पावे जिन को लाड़ लिखिया तुर पाओ जाप मन रामे नाम हर जस उत्तम काम जो गावे सुने तेरा जस स्वामी हो तिन कै सद बलहारे जाऊं रहाओ शरणागत प्रतपाल कर स्वामी जो तुम दे सोई हो पाऊ दीन दयाल कृपा कर दी जाए नानक हर सिमरन कह चाओ 83 मल्ला चौथा सेवक सिख पूजन सब आवे सब गावे हर हर उत्तम बाणी गावया सुनया तिनका हर थाए पाए जिन सतगुर की आग्या सत सत कर मानी बोलो भाई हर कीरत पाव चल तीरथ हर दा तिन की उत्तम बात है संतो हर कथा जे जनो जानी रहाओ आपे गुर चेला है आपे आपे हर प्रभ चोज वडानी जन नानक आप मलाए सोई हर मिलसी अवर सब त्यागुआ हर पानी 83 मल्ला चौथा इच्छा पूरक सर्ब सुख दाता हर जाके वस है काम तेना सो ऐसा हर त्याई है मेरे जियड़ ता सर्व सो पावे मेरे मंदा जाप मन सत नाम सदा सत नाम हलत पलत मुख उजल होई है नित त्याई हर पुरख नरंजना रहाओ जय हर सिमन पया तै उपात गद कीनी वड़ भागी हर जपना जन नानक को गुर ए मत दीनी जप हर पवजल तरना 83 मल्ला चौथा मेरे शाह मैं हर दर्शन सुख होए हमरी बेदन तू जानता सहा अवर क्या जाने कोई रहाओ साचा साहब सच तू मेरे साहा तेरा किया सच सब होए झूठा किसको आखिए सहा दूजा नाही कोय सबना विच तू वरतदा सहा सब तुझे त्यावे दिन रात सब तुझ ही थामो मंग दे मेरे सहा तू सबना करे एक दाद सब को तुझ ही विच है मेरे सहा तुझ ते बार कोई ना सब जी तेरे तू सब दस मेरे सहा तब सब तुझ ही माए समाए सब ना की तू आस है मेरे प्यारे सब तुझे ते आवे मेरे शाह जो पावे त्यों रख तू मेरे प्यारे सच नानक के पातशाह सब ना की तू आस है मेरे प्यारे सब तुझे ते आवे मेरे शाह जो पावे त्यों रख तू मेरे प्यारे सच नानक के पातशाह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह परम सकार जो सत्संग जी सतगुरु की रहमत हुई अमृत वेले जग सजे दीवाना दी हाजरियां भरिया ने नेत ने मनसार बाणी के पाठ सरवण कीते ने गुरु कृपा करे सब नू चढ़दियां कला बख्शन समा है पासा की वार दे कीर्तन दा भाई साहिब भाई जसविंदर सिंह जी अमृतसर साहब वाला जत्था सरवण करोंगे पासा की वार दे कीर्तन बड़े प्यार नाल सरवण करो उस तो पहला बेनती कि अज दो खंड पाठ आरंभ होणगे ऐतवार नू भोग पैणगे परिवार वालों बेनती है
दर्शन देने। सोआ हुण शर्म करिए आसा की वार दे कीर्तन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

विस्मात् नाद विस्मात् वेद विस्मात् जीव विस्मात् पे विस्मात् रूप विस्मात् रंग विस्मात् नागे फिरे जंत विस्मात् पौन विस्मात् पानी विस्मात् अग्नि खेडे विडानी विस्मात् धरती विस्मात् खानी विस्मात् साध लगे प्राणी विस्मात् संजोग विस्मात् विजोग विस्मात् भोग विस्मात् भोग विस्मात् सिर्त विस्मात्।

पहवि सूर्य पहवि चंद को करोड़ी चलत नंत पह विच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ पह विच अडाणी आकाश पह विच जोत महाबल सूर पह विच आवे जावे पू सगलिया भौ लिखिया सरणे नानक निरपौ निरंकार सच एक महला।

गुरु चरखा चक्की चक थल बरोले बहुत आनंद लाटू मधाणियां नगा पंखी पौंदियां लैण ना साहा

दास अधारो हम मूर्ख सुना जान है कोई पावे पारो जन नानक हर का दास है हर दास पनहारो।

नानक मेर शरीर का इक रथ इक रथ वाहो, जोग जोग फिर वटाइए गनी बुझता। सत जुगरा संतो का धर्म ग्रथ वाहो, त्रिते रथ जतै का जोर गै रथ। द्वापर रथ पैका सतगर्थवा।

राखू रखनहार दयाला, नानक घर के गोले। जुगो जुग टल चवर शतर तख्त दे मालक, हाजरा हजूर जारा जहूर शब्द गुरु बाणी के बोहित, अमृत के दाते दसा पातशाहिया दी जोत, साहब सच्चे पातशाह सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तिन्हां दी पावन पवित्र ते मुकद्दस हजूरी विच अमृत वेले तो सजे दवाना दियां हाजरियां भर रहे सन्मान योग सत्कार योग सतसंगी जनों, सतगुरां ने बड़ी अपार बख्शिश रहमत कीती है आप सब। गुरदेव दी पावन हजूरी विच जुड़ बैठ के मेरे तो पहला गुरु करके रागी जथे पासों गुरदेव दी अमृतमई बाणी आसा की वार दे कीर्तन सरवण कर रहे सी। उपरंत सत्कार योग भाई साहब जी ने गुरु चरणा विच सरबत दे भले दी अरदास करके अज दा जो पावन मुखवाक है वह आप संगत नूं सरवण कराया है। तो आओ साध संगत, समा है इस पावन पवित्र मुखवाक दी विचार दा। विचारां नूं आरंभण तों पहलां जिन्ने शरीर आप सतगुरां दे हजूर बैठे हो, दर घर दी मर्यादा नूं निभाउंदिआं होइआं फतेह दी सांझ पाईए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मुबारक शब्द जिस दा सरलेख है तनासरी संत महला चौथा। तनासरी राग विच ये संत चौथे पातशाह धन गुरु रामदास साहब दी रसना तो उचारण किया होया। गुरु ग्रंथ साहब जी दे अंक 690 दे उत्ते सुभायमान है। गुरुदेव ने पहला मंगल उचारण किया है, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद ओ अकाल पुरख वाहिगुरु एक है, ते एक रस अपनी कुदरत विच व्याप रहा है। सदीवी होंद वाला है, सदा रहण वाला है। गुरु की कृपा द्वारा उस अकाल पुरख का अनुभव ओदी समझ ओदी सोधी जिहड़ी है वह मनुख नूं प्राप्त हुंदी है। गुरु तो बिना सोझी जिहड़ी है वह संभव नहीं है। तो गुरु कौन है? गुरु है शब्द ज्ञान। जिस गुरु बारे महाराज की बाणी ने यह बोल रखे ने भी वाह वाह बाणी निरंकार है ते सजेवड़ अवर ना कोई। बाणी जिहड़ी है वह निरंकार का रूप है, इहदे तों होर कोई नहीं है। इस करके बाणी के द्वारा ही सानू अकाल पुरख की समझ लगेगी। ता ही महाराज बाणी नूं ही गुरु कहिंदे ने। बाणी गुरु, गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। इसे बाणी बारे फिर गुरदेव कहिंदे ने, तुर की बाणी आई तिन सगली,

अनेक विधि समझावू हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम्हें अपन बिरद रखावू तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सुहेले राखू राखनहार दयाला नानक करके गोले वाहिगुरु जी गौड़ी कबीर जी बिखिया ब्यापिया सगल संसार बिखिया लै डूबी परवार रे नर नाम चौड़ कत बोड़ी

राम नाम उधार, नारी अंदर सोनी, मस्तक मणि प्यार, शोभा सुरत स्वामनी, साचे प्रेम अपार, बिन पिर पुरख न जानी, साचे गुर कै हित प्यार, निज निहारी सुतिगे क्यों पिर वहन रहन वहाए, अंक जलो तन जालियन, मन तन जल बल जाए, जातन कंत नराविया, तब बिरथा जो बन जाए, सिजे कंत में हिलड़ी, सुती बूझ न पाए, हो सुती पिर जागना, किसको पुछो जाए, सतगुर मेली पैवसी, नानक प्रेम सिखाए, श्री राग महला पहला, आपे गुण आपे कथे, आपे सुन विचार, आपे रतन परख तू, आपे मूल अपार, साचो मान महत है, आपे देवन हार, हर जो तू करता करतार, जो पावे त्यों राख तू, हर नाम मिले अचार, रहाओ, आपे हीरा निर्मला, आपे रंग मजीठ, आपे मोती उजलो, आपे भगत बसीठ, गुर के शब्द सलाहना, कट कट टीठ है टीठ, आपे सागर बोयता, आपे पार अपार, साची वाट सजान तू, शब्द लंगावन हार, निडर या डर जानिए, बाज गुरु गोबार, अस्तर करता देखिए, और खेती आवे जाए, आपे निर्मल एक तू, और बद्दी तन दे पाए, गुर राखे से उबरे, साचे स्यों लिवलाए, हर ज्यो शब्द पिछाणिए, साच रते गुरवाक, तित तन मैल न लगई, सच कर जिस उताक, नदर करे सच पाईए, बिन नामे क्या साक, जिन्नी सच पिछाणिया, से सुकिए जुग चार, होमे तृष्णा मार कै, सच रख्या उतार, जग में लाहा एक नाम, पाइए गुर विचार, साचो वखर लादिए, लाभ सदा सच रास, साची दरगे बैसिए, भगत सची अरदास, पत स्यों लेखा निबड़े, राम नाम प्रगास, ऊंचा ऊंचो आखिए, को न देखा जाए, जय देखा ता एक तू, सतगुर दिया दिखाए, जोत निरंतर जानिए, नानक सह सुभाए, श्री राग महला पहला, मछली जान जाल न जानिया, सर खारा सगाहो, अत सियानी सोनी, क्यों कीतो विसाहो, कीते कारण पाकड़ी, काल न टले सराहो, भाई रे यो सिर जानो काल, जो मच्छी त्यो मानसा, पवे अचिंता जाल रहाओ, सब जग पादो काल को, बिन गुर काल अफार, सच रते से उबरे, दुपता छोट विकार, हो तिन कै बलिहार ने, दर सच्चे सच्यार, सी चाने जो पंखियां, डाली बंदक हाथ, गुर राखे से उबरे, होर फाथे चोगे साथ, बिन नामे चुन सुटगे, कोई न संगी साथ, सच्चो सच आखिए, सच्चे सच्चा थान, जिन्नी सच्चा मन्या, तिन मन सच ध्यान, मनमुख सुचे जानिए, गुरमुख जिन्ना ज्ञान, सतगुर अगे अरदास कर, साजन दे मिलाए, साजन मिल गए सुख पाया, जमदूत मुवे पिखाए, नामे अंदर हो वसना, नौ वसे मन्याए, बाज गुरु गुबार है, बिन शब्दे बूझ न पाए, गुरमति परगास होए, सच रह लिवलाए, तिथे काल न संचरे, ज्योति ज्योत समाए, तू है साजन, तू सजान, तू आपे मेलनहार, गुर शब्द चलाइए, अंत न पारावार, तिथे काल न अपड़े, जिते गुर का शब्द अपार, हुक्मी सबे उपजे, हुक्मी कार कमाए, हुक्मी काले वास है, हुक्मी सास समाए, नानक ज्योतिष भावे सोतिए, इन जनता वस किशनाए, श्री राग महला पहला, मन जूठे, तन जूठ है, जेबा जूठी होए, मुख झूठो झूठ बोलना, क्यों कर सुचा होए, बिन अब शब्द न मांजिए, साचे ते सच होए, मुद्दे गुण इनी सुख के, पिर रलिया रसमानसी, साच शब्द सुख ने रहाओ, पिर परदेसी जेतिए, तन वाडी चोरे, ज्यों जल थोड़ी मछली, कर्ण पलाव करे, पिर भावे सुख पाइए, जा आपे नदर करे, पिर सलाही अपना, सखी सहेली नाल, तन सोए मन मोया, रत्ती रंग निहाल, शब्द सवारी सोनी, पिर रावे गुणाल, कामन कामन आवई, खोटी अवगनियार, ना सुख पिए सोहरे, झूठ जली बेकार, आवन वंजन डाखड़ो, छोटी कंत विसार, पिर की नार सुहामनी, मुत्ती सोखित साध, पिर के काम न आवे, बोले फादल बाद,

तानवेल वदंती हर जुगो जोग जुगो जोग जुगो सदा पीढ़ी गुरु चलंती जोग जोग पीढ़ी चले सतगुर की जिन्हें गुरमुख नाम दवाया त्याया हर पुरख न कभी बिन से जावे नित देवे चढ़े सुवाया नानक संत संत हर एको जप हर हर नाम सुहंदी हर राम राम मेरे बाबला फिर मिल तन वेल वदंती। श्री राग महला पंजवा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन प्यारा जो मित्रा गोविंद नाम समाले मन प्यारा जी मित्रा हर निभे तेरे नाले संग सायर नाम ते आई बिरता कोई न जाए मन चिंदे से फल पावे चरण कमल चित लाए जल तल पूर रिया बनवारी कट कट नदर निहाले नानक सिख दे मन प्रीतम साध संग प्रभ जाले मन प्यारा जी मित्रा हर बिन झूठ पसारे मन प्यारा जी मित्रा बिख सागर संसारे चरण कमल कर बोध करते संसा दुख न व्यापे गुरपुरा पेटे बटपागी आठ पैर प्रभ जापे आदि जगादी सेवक स्वामी भगता नाम अदारे नानक सिख दे मन प्रीतम बिन हर झूठ पसारे मन प्यारा जी मित्रा अलदे बेखे बसवली मन प्यारा जी मित्रा दर गए निचल मली हर दर सेवे लख अपेवे निचल आसन पाया तै जन्म न मर नाम न जाना संसा दुख मिटाया चित्र गुप्त का कागत पारिया जमदूता कछु न चली नानक सिख दे मन प्रीतम अलदे खेव सवली मन प्यारा जी मित्रा कर संता संग निवासो मन प्यारा जी मित्रा नाम जबत प्रगासो सिमर स्वामी सुख गामी इस सगली पुनिया पूर्वे कमाए श्री राग पाए श्री रंग पाए हर मिले चिरी विछुनिया अंतर बार सरबत रबिया मन उपजा बिसासो नानक सिख दे मन प्रीतम कर संता संग निवासो मन प्यारा जी मित्रा प्रेम भगत मन लीना मन प्यारा जी मित्रा जल मिल गई वे मीना हर पी अगाने अमृत बाने सर्व सुखा मन बुठे श्री तर पाए मंगल गाए इच पुनी सतगुर तुठे लालीने लाए नौ निद पाए नौ सरबंस ठाकुर दीना नानक सिख संत समझाई हर प्रेम भगत मन लीना श्री राग की संत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दखना सरनाई लबने नानक प्राण आधार संत चरण कमल सिंह प्रीत रीत संतन मन आवे जियो दुतिया पौ विपरीत अनीत दासा न पावे जियो दासा न पावे बिंदर सावे इकन धीरज क्यों करे नाम विहूणा तन मनहीना जल बिन मछली ज्यो मरे मिल मेरे प्यारे प्राण आधारे गुण साध संगत मिल गावे नानक के स्वामी धारण ग्रह मन तन अंक समावे दखना सुहंदड़े सब ठाए कोई न दिसे डूजड़ो खुलड़े कपाट नानक सतगुर भेट दे संत तेरे बचन अनूप अपार संतन आधार बाणी बिचारिये जियो सिमरत सास ग्रास पूर्ण विश्वास क्यों मनो बसारिये जियो क्यों मनो बसारिये निमख नहीं टारिये गुणवंत प्राण हमारे मन बाजत फल दे तै स्वामी जी की बिरथा सारे अनाथ के नाथे सर्ब के साथे जप जुए जन्म न हारिये नानक की बिनंती प्रप है कृपा कर पवजल तारिय दखना तूड़ी मजन साध के साई थिए कृपाल लद्दे हब्बे थोकड़े नानक हर तन माल संत सुंदर स्वामी ताम भगते विश्राम आसा लग जीव ते जियो मन तुटे गलतान सिमरत प्रभ नाम हर अमृत पीव ते जियो अमृत हर पीम दे सदा थिर दीम दे विखे मन फिका जानिया पै कर पाल गोपाल प्रभ मेरे साह संगत निद मानिया सरबसो सुख आनंद कन प्यारे हर रतन मन अंतर सीम ते एक तिल नहीं विसरे प्राण अदारा जप जप नानक जीव तेरे डखना जो तो कीने अपने जिनको मिलो हो आपे ही आप मोहो जस नानक आप सुनियो संत प्रेम टगौरी पाए रिजाए गोविंद मन मोया जियो संत के प्रसाद अकाद कंठे लग सोया जियो हर कंठ लग सोया दुख सब जोया भगत लखन कर वसे पए मन सर्ब सुख वटे गोविंद टुठे जन्म मरना सब मिट गए सगली मंगलो गायो इच पचायो बौड़ नमायो होयो कर गया दीने नानक प्रभ से प्यारे संसार सागर नहीं पोया डखना साई नाम अमोल कीम न कोई जान तो जिन्ना भाग मथाए नानक हर रंग मान तो संत कहते पवित्र सुनते सब तन लिखती कल तारिया जियो जिनको साधु संग नाम हर

गुरमुख रसद सा संजम सोई, गुरमुख ज्ञानम मुक्त होई। गुरमुख कार सच कमावे, सच्चे सच समावणिया। गुरमुख थापे थाप थापे, गुरमुख जात पात सब आपे। नाने गुरमुख नाम ते आए, नामे नाम समावणिया।

सच्चा गुरमुख पाए समावणिया, हो वारी जियो वारी गुर पूरा मन वसावणिया। गुर ते शांत भगत करे दिन राती, गुण के गुणी समावणिया। रहाओ गुरमुख तारती गुरमुख पानी, गुरमुख पवन बसंत खेले बैडानी। सो निगरा जो मार

लाए महली महल सहज सुख पाए नानक नाम ले वड़ियाई आपे सुनसन त्यावणिया माज महला तीजा सतगुर साची सिख सनाई हर चेतो अंत होए सखाई हर अगम अगोचर अनाथ अजोनी सतगुर के पाए पावणिया हो वारी जियो वारी आप निवारनिया आप गवाए ता हर पाए हर स्यों सहज समावणिया रहो पूर्व लिखिया सो कर्म कमाया सतगुर सेव सदा सुख पाया बिन पागा गुर पाइये नाही शब्दे मेल मिलावनिया गुरमुख लिप्त रहे संसार गुर के तकिए नाम अदार गुरमुख जोर करे क्या तिसना आपे खप दुख पावनिया मनमुख अंधे शुद्ध न काई आत्म काती है जगत कसाई निंदा कर कर बो पार उठावे बिन मजूरी पार पहुंचावनिया यो जगवाड़ी मेरा प्रभ माली सदा संभाले

सहजे हर गुण गावनिया रहाउ, गुर प्रसादी सहज को पाए, दुधा मारे एक स्याँच लिव लाए, नदर करे ता हर गुण गावे, नदरी सच समावनिया, सबना ऊपर नदर प्रभ तेरी, किसे थोड़ी किसे है कनेरी, तू ते वार किशना होवे, गुरमुख सोजी पावनिया, गुरमुख तात है विचारा, अमृत परे तेरे पंडारा, बिन सतगुर सेवे कोई न पावे, गुर कृपा ते पावनिया, सतगुर सेवे सो जन सोहे, अमृत नाम अंतर मन मोहे, अमृत मन तन वाणी रता, अमृत सहज सुनावनिया, मनमुख पूला दूजे पाए खवाए, नाम न लेवे मरे विख खाए, अंदिन सदा बिष्टा में वासा, बिन सेवा जन्म गवावनिया, अमृत पी

जानी सतगुर सेवे सदा मन नह चल निज कर बस पावनिया गुर के शब्द हृदय दिखाया माया मोह शब्द जलाया सचो सच्चा वेख सलाही गुर शब्दी सच पावनिया सो सच राते तिन सची लिव लागी हर नाम संभाले से बड़ भागी सचे शब्द आप मिलाए सत्संग सच

सब एका जोत जाने जे कोई सतगुर सेवियां प्रगट होई गोत प्रगट भरते सब थाई ज्योति जोत मिला बनिया तिशना अगन जले संसारा लो ईमान बहुत अहंकारा मर मर जन्मे पत गवाए अपनी बिरथा जन्म गवा बनिया गुर का शब्द।

निर्मल मन हर शब्द पर रोवे, निर्मल नाम लगे बड़ भागी, निर्मल नाम सहावनिया, सो निर्मल जो शब्द है सो है, निर्मल नाम मन तन मोह है, सच नाम मल कदे न लागे, मुख उजल सच करावनिया, मन मैला है दूजे पाए, मैला चौंका

सच्चे नाय दुख कब ही ना नाही, सुख दाता सेवन सुख पायन गुरमत मन वसावणिया। हो वारी जियो वारी सुख सहज समाधल।

जय जय हर निर्मल सदा गुण दाता हर गुण में आप समावनिया हो वारी जी हो वारी सा सच्चा हृदय बसावनिया सच्चा नाम सदा है निर्मल गुर शब्दी मन बसावनिया रहो आपे गुरदाता करम विदाता सेवक सेवे गुरमुख हर जाता अमृत नाम सदा जन सोहे गुरमत हरस पावनिया इस गुफा में एक थान सहाया पूरे गुरु होमे परम चकाया आंदे नाम सलाहा रंग राते गुर कृपा ते पावनिया गुर के शब्द है गुफा विचारे नाम रंजन अंतर बसे मरारे हर गुण गावे शब्द सहाये मिल प्रीतम सुख पावनिया जम जगाती दूजे पाए कर लाए ना वो पूले देश जाए।

कूड़ कोस्त न मैल न लागे, गुर प्रसादी आंदिन जागे, निर्मल नाम बसे कट पीतर ज्योति ज्योति ज्योत मिलावनिया, त्रै गुण पड़े हर तत् न जाने, मूलों भूले गुरु शब्द न

सतगुर ने सिवेसो काहे आया, त्रिग जीवन व्यर्थ जन्म गवाया। मनमुख नाम चित आवे, ना बिन्नावे बहुत दुख पावनिया। जिन सरसा जी सोई जाने, आपे मिले शब्द पछाने। नानक नाम मिलिया तिन जन को, जिन तुर मस्तक लेख लिखावनिया। माज महला चौथा, आदि पुरख अपरा।

हाओ सिमर सिमर गुरदेव मिट गए पह दूरे शरण आवे पार ब्रह्म की ता फिर काहे चूरे चरण सेव संत साध के सगल मनोरथ पूरे काट काट एक भरत दा जातल महियले पूरे पाप विनाशन सेव्या पितर संतन की तूरे सब छाई खसम आप हर जब पई ठरूरे करते किया त पाप जो दुष्ट मुई होए मूरे नानक रता सच नय हर वेखे सदा हजूरे बारह महा माज महला पंजमा कर चौथा इको अंकार सतगुर प्रसाद किरत करम के बिछड़े कर कृपा मेलो राम चार कौंट दे।

हर ना न मिलिए साजने कत पाइये विश्राम, जित कर हर कंत न पटी पाठ नगर से ग्राम। सर्व सिंगात मोर रस साहे सन देही सब खैम, प्रभ स्वामी कंत बिहोणिया।

रहे अगाए आप त्याग बेनती करे लेहो प्रभु लड़ लाए जो हर कांत मिलाया से बिछड़ कते ना जाए प्राविन दूजा को नहीं नानक हर शरण आए असु सुखी बसंदियां जिन्ना मिया हर राय कत कर्म कमावणे दोष न काहू जोग परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग बेमुख होए राम ते लगन जन्म भी जोग खिन में कौड़े होए गए चितड़े माया भोग बिच न कोई कर सके किसते रोवे रोज कीता किछु न होवे लिखिया तुर संजोग बड़भागी मेरा प्रभ मिले ता उतरे सा बियोग नानक को प्रभ राख ले मेरे साहब बंदी मोच कातक होवे सा संग बिनसे सबे सोच मगर माहे सहंदियां हर पे संग बैठड़ियां तिनकी शोभा क्या गणी जे सहा मेलड़िया तन मन मोलिया राम सो संग साध सहेलड़िया सार जना ते बाहरी से रहन अकेलड़िया तिन दुख न कभू उतरे से जम के बस पड़िया जिन्नी रावया प्रभ अपना से दिशा नित खड़िया रतन जवेहर लाल हर कंठ तिना जड़िया नानक वाशे धूड़ तिन प्रभ शरणी दर पड़िया मगर प्रभ आराधना बहुन न जन्मड़िया पोखत कार ना व्यापी कंठ मिलिया हर नाहो मन वेद्या चरनार वे दर्शन दर्शन लगड़ा साहो ओट गोविंद गपार राय सेवा स्वामी लाहो बिख्या पोहे न सकी मिल साधु गुण गाहो जय ते उपजी तै मिली सच्ची प्रीत समाहो कर गैलिनी पारवा बोहर न बिछड़ी आहो बार जाओ लख वेरिया हर सज्जन अगम अगाहो शर्म पई न रहने नानक दर पई आहो पोख सहंदा सर्व सुख जिस बख्शे बेपरवाहो माघ मजन संग साधुआ धूड़ी कर इशनान हर का नाम त्याए सुन सब नानो कर दान जन्म कर्म मल उतरे मानते जाए गमान काम क्रोध ना मोहिए बिनसे लोभ समान सच्चे मार्ग चल दिया उस्तत करे जहान अरसर तीर्थ सगल पुन जी दिया परवान जिसनो देवे दया कर सोई परख सजान जिन्ना मिलिया प्रभ अपना नानक तिन करवान माग सुचे से काडिये जिन पूरा गुर मेहरवान फल गुण आनंद अपार जन हर सज्जन प्रगटे आए संत सहाय राम के कर कृपा दिया मिलाए से सहावी सर्व सुख हुन दुखा नाही जाए इशपुनी बड़ भागनी बर पाया हर राय मिल सहिया मंगल गावी गीत गोविंद अलाए हर जेहा अवर न दिसी कोई दूजा लवे न लाए हालत पालत सवारियां नहचल दितिया ने जाए संसार सागर ते रखियन बोहर न जन्मे ताए जिहवा एक अनेक गुण तरे नानक चरनी पाए फल गुण नित सलाहिये जिसनो तेलना तमाए जिन जिन नाम ते आया तिनके काज सरे हर गुर पूरा आराध्या दरगे सच घर रहे सर्व सुखानिद चरण हर भौजल बिख

एक तरे मां दिवस मूर्त पले जिसको नदर करे नानक मंगे दर्श दान कृपा करो हरे माज महला पंजवा दिन रहनी को अंकार सतगुर प्रसाद सेवी सतगुर अपना हर सिमरी दिन सब रैन आप त्याग सरनी पवा मुख बोली मिठड़े बैन जन्म जन्म का बिछड़े हर मेलो सज्जन सैन जो जी हर ते बिछड़े से सुख न बसन पैन हर पिर बिन चैन न पाइये खुद जिठे सब गैन आप कमाने बिछड़ी दोष न कहूं देन कर कृपा प्रभ।

पुरख पार, मरण जीवन आराधना सबना का आधार, ससुरे पिए तिस कांत की बड़ा जिस परवार, ऊंचा अगम अगाध बोध किस अंत न पारावार, सेवा सा तिस भाव सी संता की हो सार, दीना नाथ दयाल देव पत उधार नहार, आज गादी रखदा सच नाम करतार, कीमत कोई न जानी को नाही तुलन हारे, मंत्र अंतर वस रहे नानक नहीं समार, दिन रैन जे प्रभु को सेम दे तिनके सद बलिहार, संत आराधन सदा सदा सबना का बख्शंद, जियो पेंट जिन साजिया कर कृपा दी तिन जिंद, गुर शब्दी अराधिये जपिये निर्मल मंत, कीमत कहन न जाइये परमेश्वर बेअंत, जिस मन वसे नारायण सो कहिए भगवंत, जी की लोचा पूरिये मिले स्वामी कंत, नानक जीवे जप हरी दुख सबे ही हंत, दिन रैन जिसन बिसरे सो हरिया हो वे जंत, सर्व कला प्रापूर्ण मंजन वाणी थाओ, हर ओट गई मन अंदरे जब जब जीवान नाओ, कर कृपा प्रभ अपनी जन तूड़ी संग समाओ, ज्यों तू राखे त्यों रहा तेरा दित्ता पैना खाओ, उद्दम सोई कराए प्रामिल साधु गुन गाओ, दूजी जाए न सूजी किथे कुकन जाओ, अज्ञान विनाशन तम हरन ऊचे अगम अमाओ, मन बिछड़िया हर मेलिए नानक इहो सवाओ, सर्व कल्याणा तित दिन हर परसी गुर के पाओ, बार माज की तथा श्लोक महला पहला, मालकमरी तथा चंद्र

किया करवा सठ में क्रोध हुआ तन नास, नावे तोले उबे सा दस में दद्दा हुआ सवा, गए संगीत पकारिता उड्या हंस दसायरा, आया गया मुआ नाओ पिछे पतल सदका, नानक मनमुख अंध पिया बाज गुरु डुबा संसार, महला पहला दस बाल तन वीसरवन तीसा का सुंदर कहावे, चालीस पर होए पचासी पा किसे सठी को बड़ा पावे,

खाए, जिनरा चचया तिसे न जाने, अंधा अंध कमाए, जा पजे ता ठीकर होवे, काट घड़ी ना जाए, नानक गुरबिन नाहे पत बिन पत पत बिन पार ना पाए, महला दूजा देंदे था वो दिता चंगा मनमख ऐसा जानिए, सुरत मत चतराई ताकि क्या कर आख बखानी है, अंतर बह के कर्म कमावे सोचो कुंडी जानिए, जो धर्म को आवे तिस धर्म ना होवे पाप कमाने पापी जानिए, तू आपे खेल करे सब करते क्या दूजा आख बखानी है, जिचर तेरी ज्योति चर ज्योति विच तू बोले विच ज्योति होर किश करियो दिखा वस्यानी है, नानो गर्मख नदरी आया हर इको सुगड़ से जानी है, पौड़ी तुद आपे जगत पाए के तुद आपे तंदे लाया, मोठ गोली पाए के तुद आपो जगत खवाया, तिशना अंदर अगन

पावे तो रख तू सब करे तेरा कराया। एक ना बख्शे मिल है गुरमति तू दे लाया, एक खड़े करे तेरी चाकरी में नावे होर न पाया। होर कार विकार है एक सच्ची कारे लाया, पुत कलातक डंब है एक लपत्र है जो तुद पाया। ओ अंदरों बारों निर्मल है सच्चे नाए समाया, श्लोक महला पहला। सोने के पर्वत गुफा करी के पानी प्याल, कै विच धरती के आकाशी उधर हां सिर पार। पुर कर काया कपड़ पहरा धोवा सदा कार, बग्गा रता पीला काला बेदा बेदा करी पकार। होए कचील रहा मल धारी दुरमत मत विकार, ना हो ना मैं ना हुआ नानक शब्द विचार। महला पहला वस्त्र पखाल पखाले काया, आपे संजम होवे अंतर में लगी नहीं जाने। बारो मल मल धोवे अंधा भूल पिया जम जाले, बस पराई अपनी कर जाने। हुमे बिच दुख काले नानक गुरमुख हुमे, टुटे ता हर नाम ते आवे। नाम जपे नामो अराधे नामे सुख समावे। पवड़ी काया हां संजोग मेल मिलाया, तिन ही किया बिजोग जिन अपाया। मूर्ख भोगे भोग दुख सवाया, सुखों उठे रोग पाप कमाया। हर को सोग बिजोग अपाए खपाया, मूर्ख गंत गणाए झगड़ा पाया। सतगुरु हथ नवेड़ झगड़ चकाया, करता करे सहोग न चले चलाया। श्लोक महला पहला कूड़ बोल मरदार खाए, अवरी नो समझावन जाए। मुठा आप माए साथे नानक ऐसा आगू जापे महला चौथा। जिसे अंदर सच है सो सच्चा नाम, मुख सच अलाए। ओ हर मार्ग आप चालदा होर नानो हर मार्ग पाए। जे अगे तीर्थ होए ता मल लह छपन नाते सगवी मल लाए। तीर्थ पूरा सतगुरु जो आंदन हर हर नाम ते आए। ओ आप छोटा को टंब स्यों दे हर हर नाम सो सस सडाए। जन नानक तिस बले हार ने जो आप जपे अवरा नाम जपाए। पौड़ी एक कंध मूल चुन खाहे बनखंड वासा, एक भगवा वेस कर फिर है जोगी सन्यासा। अंदर तिश्ना बहुत साधन भोजन की आसा, बिरथा जन्म गवाए ना गिर ही ना उदासा। जमकाल सिरों ना उतरे त्रैविद मनसा, गुरमती काल ना आवे नेड़े जा होवे दासन दासा। सच्चा शब्द सच मन घर ही महे उदासा, नानक सतगुर सेवन अपना से आसा ते निरासा। श्लोक महला पहला जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत, जो रत पीवे मानसा तिनको निर्मल चीत। नानक नाउ खुदाए का दिल हच्छे मुख लेहो, अवर दिवाजे दुनी के झूठे अमल करे हो।

सबसे महाए साथे अग्गे गया मुहे मुहे पाहे सो ऐसा अगु जापे पड़ी महारुति सब तू कड़ी मूर्त बिचारा तू गणते किने ना पायो सच्चे लख पारा पढ़िया मूर्ख आखिए जिस लव लो अहंकारा नाम पढ़िए नाम बूझिए गुरमति बिचारा गुरमति नाम तन खटिया भक्ति परे भंडारा निर्मल नाम मन्ने अंदर सच्चे सचे आरा जिसदा जियो प्राण है अंतर ज्योत अपारा सच्चा सहो इक तू होर जगत बंजारा सरो का महला पहला मेहर मसीद सद

नानक मिठे पतरिए बिखोल का आए पवड़ी। इकना मर न चित आस कनेरिया, मर मर जमे नितक सेना केरिया। अपने मन चित कहन चंगेरिया, जमराज नित मनमुख हेरिया। मनमुख लूण हराम किया ना जानिया, बद्दे करन सलाम कसम ना पाणिया।

पत्थर पाला क्या करे खुसरे क्या करवास, कुत्ते चंदन लाइए पीसो कुत्ती तात, बोला जे समझाइए पढ़िए सिमरत पाठ, अंधा चानन रखिए दीवे भले 50, चोणे सोना पाइए चुंचन खावे कास, लोहा मारन पाइए टहे न होए कपास, नानक मूर्ख एहे गुण बोले सदा विनाश, महला पहला कहा कंचन टुटे सार, अग्नि गंड पाए लुहार, गोरी सेती टुटे पतार, पुत्ती गंड पवे संसार, राजा मंगे दिते गंड पाए, भुखिया गंड पवे जा खाए, काला गंड नदिया मिचोल, गंड प्रीति मिठे बोल, वेदा गंड बोले सच कोए, मोया गंड नेकी सत होए, एत गंड बरते संसार, मूर्ख गंड पे मोहे मार, नानक आखे हे विचार, सेफती गंड पवे दरबार, पौड़ी आपे कुदरत साज के आपे करे विचार, इक खोटे इक खरे आपे परखन हार, खरे खजाने पाइए खोटे सटिए बहर वार, खोटे सच्ची दरगे सुटिए किस आगे करे पकार, सतगुर पिछे भज पवे एहा करनी सार, सतगुर खोट्यों खरे करे शब्द सवार नहार, सच्ची दरगे मनियन गुर

सच संजम सूचा गुर की पौड़ी ऊंचो ऊंचा। कर्म मिले जम का भौ मूचा गुर मिलिए मिल अंक समाया कर कृपा कर मैल दिखाया नानक हमें मार मिलाया। गौड़ी महला पहला। किरत पिया ना मेटे कोए क्या जाना क्या आगे होए जो तिस भाणा सोई हुआ और ना करने बाला दुआ। ना जाना कर्म केवट तेरी दात कर्म धर्म तेरे नाम की जात रहाओ। तू एवट दाता देवन हार तोट नाही तुद भगत भंडार किया गर्भ ना आवे रास ज्यो पिंड सब तेरे पास। तू मार जी वाले बख्श मिलाए ज्यो भावी त्यों नाम जपाए। तू दाना बीना साचा सर मेरे गुरमो दे परोसे तेरे तन में मैल नहीं मन राता गुरबचनी सच शब्द पछाता। तेरा तान नाम की बड़ियाई नानक रहना भगत शरण आई। गौड़ी महला पहला। जैन कथ कहाया प्यो पी आया अनपै बिसरे नाम समाया क्या डरिए डर डरे समाना पूरे गुर के शब्द पछाना रहाओ। जैस नर राम हृदय हर रास सह सपाय मिले साबास जय सवारे साज ब्याल एतुत मनमुख बाधे काल। एहनस राम हृदय से पूरे नानक राम मिले भरम दूरे। गौड़ी महला पहला। जन्म मरे त्रै गुण हितकार चारे वेद कथे आकार तीन वास्ता कहे बखियान तुरिया वास्ता सतगुर ते हर जान। राम भगत गुर सेवा तरना बोड़ जन्म ना होए है मरना रहाओ। चार पदार्थ कहे सब कोई सिमर सात पंडित मुख सोई बिन गुर अर्थ विचार ना पाया मुक्त पदार्थ भगत हर राया। जा के हिरदे बसया हर सोई गुरमुख भगत प्राप्त होई हर की भगत मुक्त आनंद गुरमत पाए परमानंद। जिन पाया गुर देख दिखाया आसा माय निराश बिजाया दीना ना सर्व सुख दाता नानक हर चरणी मन राता। गौड़ी चेती महला पहला। अमृत काया रहे सखाली बाजी ए संसारो लब लोभ मुच कूड़ कमावे बहुत उठावे पारो। तू काया मैं रौलदी देखी ज्यो तार ऊपर शारो सुन सुन सिख मारी सुकेदरा कीता रहसी मेरे जीड़े बौ ना आवे बारी रहाओ। हो तो दाखा मेरी काया तू सुन सिख हमारी निंदा चिंदा करे पराई झूठी ला इतबारी। बेल पराई जोहे जीड़े करे चोरी बरे आई हंस चलिया तू पिछे रहिए छुटड़ होए ए नारी। तू काया रहिए सपनांतर तुद क्या कर्म कमाया कर चोरी मैं जा कुछ लिया ता